0: Avec un ensemble, j'ai la parole et l'opinion, ça. Je ne peux pas ça, de rentrer dans un moule et je n'ai pas envie de ressembler à une tarte.
1: बात देखिए जरा ये तस्वीर कुछ इस तरह से एयर स्ट्राइक की है थाईलैंड ने और सोचिए अमेरिकी F-16 फाइटर से हमला किया है कंबोडिया पर और ये सारी लड़ाई मंदिर पर अधिकार के लिए हो रही है और देखिए जरा इसके बाद लोगों में डर दहशत है देखिए लोगों ने भागना शुरू कर दिया है अपने घरों को छोड़ना शुरू कर दिया है लड़ाई शिव मंदिर पर अधिकार के लिए हो रही है लोगों ने अपनी गाड़ियां उठाई अपना सामान उठाया अपना घर बार सब छोड़ दिया बच्चों के स्कूल की छुट्टी कर दी गई है लोग इलाके को छोड़कर जा रहे हैं इससे पहले आपको याद होगा जुलाई में भी इसी शिव मंदिर के लिए कंबोडिया और थाईलैंड में लड़ाई हो गई थी

0: मंदिर के नाम पर जो लड़ाई है इसे रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आगे आए थे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया को बिठाया और इन दोनों के बीच शांति करवाई थी कि अब दोनों नहीं लड़ेंगे।
1: Quand tu as fait des choses, mine, n'est-ce pas que tu as fait des choses, quand tu as fait des choses, tu as fait des choses,
0: दुनिया की ये पहली लड़ाई आप देख रहे हैं जो एक मंदिर के लिए हो रही है और वो भी जंग का मैदान बन गया। ये वही